जाने मन कोई। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
1: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ट IG6 3SL
0: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
1: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
0: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
2: 07300998923। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: Winner, winner, roast for dinner this autumn at Aldi. Feed four for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
6: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
7: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
8: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ट IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
3: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going.
4: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
5: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
5: Come on, let's go win this.
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms

0: ATCO food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, ATCO food containers.
0: The perfect food storage solution, ATCO food containers.
2: तेरा क्या होगा रे कालिया?
3: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
2: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
4: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
5: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 02085744934। डिलीवरी भी अवेलेबल है Uber Eats पर।
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
7: SKLPC presents The Backstage Siblings, the pioneers of bhajan jamming, live in London. Join us for an unforgettable evening of music and devotion at SKLPC UK, India Gardens, West End Road. Friday, 9th October at 8 p.m. and Saturday, 10th October at 7 p.m. Book now at sklpc.com/bss. Radio partner, Leica Radio Network.

0: डालता भाई
1: ना, क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
0: आए होए जवा
1: सोचना, जो भी होगा देखा जाएगा।
0: बाबू से दे फिंगर नॉट फिनिश हिज बॉडी व्हेन ही कुड फिट द वर्ड्स बट हीज गॉट इट। मोरे बाबा जवाद भाई कैसे हो?
2: साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी।
0: जवाद जवाद, can you imagine if someone's in the toilet next to you and they can hear you singing this at your at full capacity?
2: थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी।
0: I'll tell you what, if you work with Javad, you need to go toilet when he goes toilet.
3: Nice track, Brasco.
2: सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
0: Love it, man. Que sera, sera.
2: के लिए आज को न खोना, आज न कल आएगा।
0: बहुत विशाल।
4: सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
0: क्या बात है भाई साहब।
5: मॉर्निंग धोनी। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
0: Hopefully if you're wearing your glasses, that is Vashal.
6: Gana, aise gaata hai, Mr. Brasco.
0: हाँ जी आसाद भाई।
6: सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
0: ज़्यादा ना सोच, सिर दुखेगा।
7: जो भी होगा देखा जाएगा।
0: I like that remix. She went to Specsavers.
5: Good morning, Tony. Today's song is Sochina Kya Jo Bhi Hoga Dekha Jayega.

0: शांतिवीर। Here we go।
1: मेहुल, ये जो मिला है तुम्हारी वजह से मिला है, मैं तेरा आभारी हूँ। सारे प्रेक्षक जो है मेरे चाहने वाले हैं। एक्टर तो मैं दिखता ना हूं, धमाल की शक्ल पाने के बावजूद भी आज मुझे ये मिला। मैं खुश हूं आप लोगों में से एक हूं। आज तक मुझे ऐसे लगता था कि फिल्म फेयर के अवार्ड खरीदे जाते हैं, मुझे मिलने के बाद लगता है नहीं खरीदा जाता। हर एक को ऐसा ही लगता है, अगर नहीं मिलता तो मैं बोलता वहां से ये उन्होंने खरीदा। क्या करूं, आखिर में इंसान हूं ना, ऐसे ही लगेगा। शुक्रिया शुक्रिया।
0: नो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया टू यू नाना जी। आई मीन योर लेगेसी विल गो फार बियॉन्ड द स्क्रीन। You were fierce, you were outspoken, you were uncompromised about your craft. I mean, the Indian cinema, we've truly lost a distinguished voice today. Thank you for the characters, the courage and the memories. Om Shanti.
2: Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And taking a look at a finance for us with the State Bank of India's Yono SBI UK mobile app, online platforms and the branches, the rate is up to 127.5 Indian rupees.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro, the ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See TescoMobile.com/terms.
2: Kush on the mid-morning show.
4: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
5: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
4: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स।
5: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM।
4: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896 680 920।

0: Echo Radio.
1: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: दिस सैटरडे द 12 मिलियन पाउंड लॉटो जैकपॉट मस्ट बी वन
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
7: Must be won.
3: Yes, the lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
8: Yeh hai Laika Radio.

0: करें www.siddhashram.com या कॉल करें 020-8426-0678. हर हर महादेव.
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा.
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450.

0: नजर ना लग जाए जानू. आई लव द वर्ड जान जानू. इट्स अ फील गुड ट्रैक फॉर यू जानू.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

0: a peppy one for you before I love you and leave you. We've got Rubina Khan coming up next in Manchester, Bali Brahmabhat on Like a Golden, Kajal keeping you company on After and Reload, sitting in for Vish Bhatnagar. It's me, Kush, signing out.
1: Kush on the Mid-Morning Show.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: वेम्बली ना जूना अने जानीता पाटीदारो नवरात्री नू आयोजन करे तो पची एमा कहीं जना घटे।
5: OMB इवेंट एंड माणिक चौक लेने आवया छे नवरात्री 2026 गरबा क्वीन जानवी रावल साथे।
4: 10th ऑक्टोबरे प्री नवरात्री अने 11th थी 19th ऑक्टोबर नवरात्री नी रमझट वेम्बली नी आर केल्विन स्कूल वेम्बली हाई रोड मा।
5: तो हालो सौ साथे मळी सहयोग आपो अने परिवार साथे गरबे घूमवा जोड़ाओ।
4: टिकट्स अवेलेबल एट माणिक चौक अने वधु माहिती माटे संपर्क करो भरत पटेल ने 0789171 7439। जय माताजी।
6: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
7: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
6: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
7: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
6: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
7: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा।
6: शाम 7 बजे डोर्स ओपन।
7: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208426 0678।
1: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Southeast Gujarati Association, SEGA, on Sunday, 11th October at White Hart Road, London, SE18 1DG. Come along and celebrate the spirit of Navratri with us.
8: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
1: This Diwali, celebrate with Shayona.
8: Enjoy Mathia and Chora Fali. Mix and match any three for just £4.50.
1: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
8: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
1: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khas.
9: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
8: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
9: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
8: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
9: कॉल प्रथम पटेल 0783830 2450।
10: तेरा क्या होगा रे कालिया?
11: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
10: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
12: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
13: पूनम स्वीट सेंटर 86 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल। कॉल 0208574-4934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
14: Find the best deal for flights on Air India, Emirates, British Airways, Virgin, BIA and Sri Lankan Airline only with TravelHubWorld.com.
15: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
14: TravelHub, best service with unbeatable price.
15: At all protected.
14: Visit TravelHubWorld.com.
16: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
17: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
16: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
18: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस। एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
1: नेक्स्ट रीलोड विद फिश बटनागर।
19: Radio, London.
20: This is Leica Radio.

0: The Golgappiyan da pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Did you know? Kavita Krishnamurthy has performed at London's Royal Albert Hall and New York's Lincoln Center, bringing her remarkable voice to international audiences.
3: Kavita Krishnamurthy, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at Box Office. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
5: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
4: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
5: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फात्सुमा
4: कॉल प्रथम पटेल 0783830 2450
6: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
8: 0730098823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823
9: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
10: Leica Radio.
11: Time to reload with Vish. Vish Bhatnagar's Untangle the Tangle. Vish Bhatnagar's Untangle the Tangle.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Southeast Gujarati Association, SEGA, on Sunday, 11th October at White Hart Road, London, SE18 1DG. Come along and celebrate the spirit of Navratri with us.
2: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
3: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
4: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
3: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
4: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
3: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
4: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
3: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
4: पासेस बुक करें सिद्धाश्रम.com और कॉल 0208426 0678

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323. 0730-009-9823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-009-9823.
1: पासपोर्ट्स, टिकट्स, किड्स टैबलेट्स,
2: ऑल पैक्ड. बट व्हाट अबाउट आवर फोन्स? वी नीड देम फॉर maps, WhatsApp, photos.
1: And checking in with grandma.
2: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
1: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
1: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Holiday sorted.
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666.
6: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
7: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
9: This Halloween you'd be bats to go anywhere other than Aldi. There's everything from Cadbury's Heroes to Swizzle Sweet Tubs and British Pumpkins, perfect for carving. Sink your fangs into trick-or-treat essentials from 39p. So, after dark, fly to Aldi!
10: Happy Navrati from Leica Radio Network. Don't forget, Navrati starts in 3 days. Special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Foods.
11: Hey, this is Radio Ali from the Radio Ali Rollercoaster. Catch my show every Monday to Friday evenings from 7 to 10 p.m. Make sure you make it a date, 7 o'clock on the Radio Ali Rollercoaster. Mucho piar.

0: Set Co Food Containers Total Satisfaction.
1: Pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
2: Cow's Choice Pure Ghee, har chamach mein, shudh desi swaad.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
5: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
6: श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में प्रदीप मिश्रा जी के साथ अनुभव कीजिए शिव महात्म्य सत्संग फ्राइडे 9 अक्टूबर सुबह 10:30 से 11:30 बजे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो में आस्था चैनल पर लाइव भी देखिए अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.siddhashram.com या कॉल करें 02084260678 हर हर महादेव

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
3: Happy Navrati from Leica Radio Network. Don't forget, Navrati starts in 3 days. Special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Foods.
4: Hello everyone, this is Mamta Sharma and you are listening to my favorite, one and only, my girl, Radio Wali. Radio Wali is bringing you all the good vibes. So, stay

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।